0: the close, hold her close. Don't cross that line.
1: तो नमस्ते, KZMU Moab Community Radio से बोल रही हूँ दीपाली परमार. 90.1 और 106.7 FM. और मैं जब अपने घर होती हूँ पुणे में, भारत में, मैं www.kzmu.org ऑनलाइन यही रेडियो सुन सकती हूँ. और आप मुझे ये रेडियो पे सुनिए, शुक्रिया.
2: And on 90.7 FM in San Juan County.